0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: तो उनके लिए ये चीज़ों की वो वैल्यू नहीं होती। हर बंदे का दिमाग इस तरह का नहीं होता कि वो चीज़ों को फिगर आउट करने बैठे। डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट किस्म के ब्रेन्स होते हैं लोगों के पास, और उसके हिसाब से चीज़ें, आप अगर उस ब्रेन के खिलाफ कोई चीज़ चाहते हैं और शिद्दत से चाहना शुरू हो जाए तो फिर तो ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपको उस तरह नहीं मिल सकती। तो इसमें से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लोग हैं हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर 972-501-9390। लगता है जी लोग थैंक्स गिविंग मना के आ गए हैं। और व्हाट्सएप पे एक मेहरबान हमारे साथ बड़ी दूर से, किसी और कॉन्टिनेंट से हैं शायद। वीडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
1: आजाद जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: सर जी, क्या हाल चाल है, ठीक हो?
1: सर जी बिल्कुल बढ़िया। सर जी आज मूड लाइट है, मैं तुसी भी लाइट दिया करता हूं, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी।
0: नहीं, मैं तो मैंने तो जिस तरफ लेके जाओगे मेरा वो मूड है।
1: सब तो पहला सर जी, I would like to apologize for the last time because I was on the air and I was not organized.
0: No problem.
1: So, हाँ जी,
0: secondly, इसी तरह बंदा सीखता है आहिस्ता आहिस्ता।
1: हाँ जी सर, definitely. Like in that moment, I learned two things that I was. मैंने आपको पहले message भी किया था, like I will join the show in the second half, but then I couldn't control myself. Mm-hmm. And then I learned, like, it's my impulse.
0: ठीक है।
1: अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम था, अभी बात करते करते मेरा दिल इतना धड़क रहा है, like, it's, I feel like I just ran a marathon.
0: No, bro, ये जब जब ना आपके दिल में बहुत कुछ होता है, ये पता है क्यों होता है, ये फीलिंग बंदे को तब आती है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको एक धड़का सा लगा होता है कि पता नहीं वो मैं वैसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या वो बात उस तरह समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी, या मैं समझा भी पाऊंगा या नहीं। तो इसके लिए हीरा सिंह जी, आपके लिए भी और दूसरे, ये सोचते हैं ना आप इस तरह, ठीक है?
1: बिल्कुल 100%।
0: हाँ, ऐसे नहीं सोचना, इसको सोचना ऐसे है कि मैं, मेरे पास जो है, मैं जाऊँगा ऑन एयर, अगली दफ़ा इस जहन को ये रखिएगा, ये जो जितना दिल धड़कना है या जो मसला है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। फ़ोन पर बात करते हुए आपका दिल नहीं धड़कता, ठीक? ये जो फीलिंग है ना कि और भी लोग सुन रहे हैं और भी मामलात हैं, उसकी वजह से दिल में ये रेसिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है। आपने सिर्फ ये सोचना है, एक कंट्रीब्यूशन करने की एक जगह है, उनको मेरा कंट्रीब्यूशन चाहिए, मैं जो हूँ जो दे सकता हूँ और जैसा भी हूँ, मैं ऑन एयर जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा, उनको जो बात चाहिए होगी वो ले लेंगे, या वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो अपने काम की बात मुझसे निकलवा लेंगे, ये उनका काम है, मेरा काम है हाजिरी देना, ठीक है? बस आप जब इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर रेसिंग करना या वो जो ना थोड़ा सा ओवर चीज़ का हो जाना या घबराहट हो जाना, और उसमें फिर आदमी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, आप आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। मसला ये है कि हम तब क्यों आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, जब इमोशन टकरा जाते हैं लॉजिक के साथ। तो आपने जब बात करनी होती है तो सिर्फ सोचा करें कि हमने एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए बैठे हैं, उस चीज़ को जब फिगर आउट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसमें इमोशन डालना, उसमें पैशन डालना और बाकी चीज़ें हम डालेंगे, लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरे से जो भी आप बात करोगे ना, कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा शो में, या आपसे मैं कह रहा हूँ और आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ कि आपने सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन देने आना है, मुझे जितना चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, जिस तरफ मुझको लेके जाना है वो मेरा काम है, आपका काम है बस ढीला छोड़ दें, आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं।
1: जी सर,
0: ठीक, इतना समझ गए?
1: समझ गया।
0: आइंदा इसी बात को जहन में बिल्कुल ऐसे रख के आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर फोन के अपने कॉल आपने जब करनी है तो आपने कहना, लंबा सा एक सांस पहले लेना है आपने, ठीक है, पूरा एक लंबा सांस लेना है, एक दो तीन, ताकि वो बिल्कुल जो यू नो आप काम डाउन होकर रिलैक्स हो जाएं। फिर जब आप ऑन एयर आएंगे, फिर मैं जब आपसे बात करूंगा, तो उसके बाद हम फिर ढीला छोड़कर एक क्वेश्चन होगा आपके जहन में या एक एंगल होगा जिसको आप लेके आएंगे। जब बहुत सारे एंगल जहन में होते हैं ना, तो फिर भी ये हो जाता है कि पहले कौन सा बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो हर रोज़ अपने जहन में सिर्फ एक सोच, एक मसला या एक एंगल लेके आपने ऑन एयर आना है, बाकी मैं बातों बातों में एंगल भी निकाल लूँगा और मसले भी मैं खुद ही निकाल लूँगा, ठीक हो गया? Would that help?
1: Definitely. It makes sense. And again, it's like lots to observe, lots to absorb. Aur mera jaise aapne abhi kaha, mind waise hi kaam karta hai. There are too many things. Aur itni entangled ho chuki hai. I'm trying to put them one by one. But like, you know, jo pichle dahakon ki jo soch ka jo पैटर्न बन चुका है, उसे

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
3: फौज में जब तक गया मैं, तब भी काफ़ी वीक था मैं। जब सीनियर में जो भी मैं चीज़ें अचीव करता था, उसके बावजूद मैं बहुत वीक आदमी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैं वीक था। इन्वायरमेंटली जो चीज़ें मुझको असर कर रही थी, और जिस सोसाइटी में बड़ा हो रहा था, जिस घर में मैं बड़ा हो रहा था, वो हर चीज़ उन पूरा माशरा एक तरफ सोच रहा था और मैं एक और तरफ सोच रहा था, जिसकी वजह से मैं डर गया, घबरा गया, और मुझे लगता था कि मैं कैसे सही हो सकता हूँ, ये सब के सब कैसे गलत हो सकते हैं। 100-100 साल की इनकी ज़िंदगियाँ हैं, बट दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। इनके फाइनेंसेस बेहतर नहीं हो रहे, इनकी इमोशनल लाइफ बेहतर नहीं हो रही, इनकी शादियां मतलब कुत खाने खुले हुए हैं, इनके बच्चे इनके काबू में नहीं है, जिंदगी गोलियां मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जहालत की ये सारी फजूल की ज़िंदगी चीज़ें जी रहे हैं। तो उसने मुझे क्या किया, अपने अंदर बंद कर दिया, और उस घुटन में मेरी स्टैमरिंग भी शुरू हो गई, मेरी हर चीज़, मुझे बीमार रहना शुरू हो गया मैं, फिज़िकली मेंटली हर चीज़ के साथ साथ, तो मैं बहुत वीक हो गया। तो आपने ये बात समझनी है कि फिर मैंने जब दुनिया के साथ चलने की कोशिश, क्योंकि मैं वीक था, तो मैंने कहा यार ये तो खा जाएंगे हमको, तो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं, ये हो सकता है सही कह रहे हो। अंदर से हालांकि बड़ी आवाज़ आती थी कि नहीं ये सब गलत है, ये कोई ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फिर भी 28-30 साल तक मैंने लोगों के तरीके से करने की कोशिश की, जो घर में सीखा समझा था वो करने की कोशिश की, जो इर्द गिर्द सोसाइटी में चल रहा था वो करने की कोशिश की, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस मैंने बिजनेस में गया, जॉब में गया, मैं उसमें करने की मैंने कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज टू थिंग्स, वन दे वर ऑल रॉन्ग, एंड सेकेंडली आई वॉज मिजरेबल, एंड आई वॉज मिजरेबल टू एन एक्सटेंट वेयर मैं इनकपैसिटेटिंग हद तक ख़राब हो गया कि मेरे से काम ही कुछ नहीं होता था, ना मैं सोच पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था। अपेरेंटली हर चीज़ मेरी परफेक्ट थी, लोग मुझे मेरी तरह बनना चाहते थे और मेरी मिसालें देते थे, और वो बस कहते थे कि वह बंदा ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद बंदा अंदर से वीक, खोखला हो गया, हॉलो। तो फिर मुझे किताब पढ़ने से, एक रात को जब मुझे आहिस्ता था समझ आनी शुरू, तो मैंने जिस दिन कुरान पहली दफ़ा खोला, और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा, पढ़ने लगा, तो मैंने रब की जब बातें सुनी एग्जैक्ट वो किताब में क्या कहता है, और फिर मैंने दुनिया की जो 30 साल की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, जब मैंने उसको देखा, तो वो मुझे लगा कि दोनों के आपके बीच में टोटली कोई भी एक कंट्रास्ट था, बिल्कुल कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती थी। जो भी रब कह रहा था, हमारी सारी सोसाइटी, पूरा घर, पूरी फैमिली, सब कुछ हम उसके खिलाफ थे। तो जब मुझे समझ आई कि ये, और जो ये 30 साल में जिन्होंने मुझे किया, उन्होंने मुझे एक वीक, जहनी तौर पे कमज़ोर, और हर किस्म का जो कि उसके नुकसान होते थे, मुझे वो आदमी बना दिया। और जब मैं दूसरी साइड पे लेके चला उन चीज़ों को, तो अगर मैं शुरू में तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, इसकी बड़ी इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है हर चीज़ की, जैसे आज का क्लिप भी था एनलाइटनमेंट की या इल्म की कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन मैं वो कीमत 100 दफ़ा देने को तैयार हूँ। मुझे एक और ज़िंदगी भी मिलती है, तो मैं डायरेक्ट उसी ज़िंदगी में वही करने की कोशिश करूँगा जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात, ये बात कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, आप समझें, मेरे मुझे जिस पठान कल्चर में कंडीशन किया गया है ना, मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, ये लोग और मुझे, इंसानों की बहुत ज़्यादा परवाह है, एक हद से ज़्यादा परवाह है, जो कि उनको खुद भी नहीं है ज़ालिमों को, तो मुझे उनसे भी ज़्यादा उनकी परवाह है। लेकिन ये 25-30-32 साल उनकी परवाह करके मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे समझ आया कि अगर मुझे इनकी एक्चुअल में परवाह है, तो मैं उनको वो बताऊँ, मैं अगर पैसे कमाता हूँ तो मैं उनको वो तरीका बताता हूँ जिससे वो पैसे कमाएं, मैंने हेल्थ कमाई तो मैंने उनको वो बताया कि वो भी हेल्थ कमाएं, मैंने अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में जो कमाल देखी और इतनी मुझे मोहब्बतें इससे मिली, फिर मैंने उनको वो बताया कि जो उनको भी मिलें। तो मुझे लोगों की बेइंतहा परवाह है, इतनी ज़्यादा कि मुझे, मैं अगर अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ ना, मैंने आज तक कभी बारगेनिंग नहीं की, लेकिन मैं जब किसी के साथ जाता हूँ, मैं उसको बेस्ट डील दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी मेरे इर्द गिर्द कोई लोग होते हैं ना, वो खुश रहें, वो सुकून में रहें, उनको जो चाहिए वो मिल जाए, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो और मैंने ज़िंदगी में जो किया, मैं आर्मी में गया किसी की वजह से गया, मैंने फिल्म की मैंने किसी की वजह से की, मैंने आर्मी छोड़ी किसी की वजह से छोड़ी, मैंने ट्रैवल किया जहाँ जहाँ मैं ज़िंदगी में काम करता हूँ मैंने सब किसी के लिए किया। मैं अभी फिल्म जो करता हूँ वो भी मैंने किसी के लिए, मैं खुद के लिए मुझसे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं खुद के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं सुकून करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब ज़िंदगी में दूसरों के लिए करने का मतलब ये है कि मेरे लिए लोग बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या मैं उनकी परवाह करूं? मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उनको क्या गलत और सही लग रहा है, मैं इस बात की परवाह करने लगा हूं कि क्या सही है और उनके लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है और हम दोनों के रिश्ते के लिए क्या सही है। जब ये पता लग जाता है तो फिर लोगों की रोंती बूथियाँ, और उनको नहीं पता, एक आदमी गलत चीज़ खाना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, उस रास्ते में वो मारा जाएगा, ज़हनी तौर पे बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसके वो चीज़ करने के बजाय उससे वो काम करता कराता और उसको सीधा रखता हूँ कि वो कर ले जिसमें उसकी भलाई है, और अगर वो एक हद तक नहीं रुकता तो फिर वो अपना कर ले जो उसने करना है, और फिर उसकी जो भी कीमत और सज़ा है वो उसको उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो जब आप ये जान जाएंगे तो ये जिस तरह मैंने पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझाया है, इस एंगल से आपने सोचने की कोशिश की?
4: सर मेरा कहने का मकसद मतलब यही था, जब मैंने कहा कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, परवाह मुझे भी फैमिली की ऐसे ही है जैसे आपको है, परवाह मुझे भी जो मेरे आसपास ऐसे ही है, बट कितना बंदा समझाए जो आपने कहा सही और गलत। अभी अभी मैंने यही करना शुरू किया है कि मैं जानता हूँ ये सही है, मैं इसको कर दूंगा, और इसके बाद इन्होंने लेना है तो ये ले लेंगे, अगर नहीं लेना है तो ये नहीं लेंगे,
3: बस हक है उनका ही।
4: हाँ जी,
3: और क्योंकि अभी आपने इनसे बाहर उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ना वो ओवर रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करते हैं और इसमें मारे जाते हैं और अपने लिए दुख और तकलीफ बना लेते हैं। किसी भी आदमी को जो जिम्मेदार है, जो बेहतरी करना और जानना चाहता है, मैं सख्त खिलाफ हूँ उस आदमी को टॉर्चर करने की, कोई भी करता है मैं उसको कभी नहीं माफ़ करता। कि एक आदमी आपके लिए अच्छा सोचता है, आप उसको तकलीफ़ देते हैं, एक आदमी आपको थोड़ा सा देता है और आप उसे और मांगने की कोशिश करते हैं, एक आदमी आपके साथ नाइस होता है, काइंड होता है, आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, आप उससे उसके साथ चिपक जाते हैं लीच की तरह। मुझे ऐसे किसी बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो जहाँ फंसेगा, जहाँ उसको मसला तकलीफ होगी, वो मुझसे या मुझे किसी को मैं जानता हूँ तो उसको मैं रेफ़र करूँगा, उसको ठीक करेंगे, और उसके बाद वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। If they are not contributing to what I am trying to do for them and for myself and for others, I don't need them, or I limit my interaction with them. And you know, और जो भी reciprocal जो चीज़ें मुझे उनसे करनी है मैं उसके हिसाब से नहीं करूँगा। जिसका जितना contribution है, चाहे वो मेरा blood relation है, चाहे वो मेरे friends हैं, चाहे मेरे partners हैं, चाहे कोई भी बंदा है, अगर वो मेरे constitution के ही खिलाफ है तो मैं उसके साथ नहीं चल सकूंगा लंबा। थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं चल सकता, इतनी सी बात है। चाहे वो जो मर्जी डीलें लेके आ जाएं, कुछ भी वो कहें, चाहे सोसाइटी कुछ कहती है, चाहे लॉ कुछ कहता है, जो भी होता है लॉ पे, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लॉ वगैरह का जब कुछ मुझे कहते हैं कि जी हम लॉ के थ्रू ये करेंगे, मैं कहूँगा सारा कुछ सारा आप ही ले लो, ले जाओ सारा कुछ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लॉ से खेलता रहूँ मैं। समझ, आप लॉ के पास किस लिए जाते हैं? कि जो आपको इंसाफ से फैसला करे ना कि आधा आधा कर देंगे या 20-25 कर देंगे या ये बात ऐसे हुई थी। मैं कहता हूँ नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, ये पकड़ो और निकलो सारे का सारा लेके। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मुझको क्वालिटी की ज़िंदगी जी कर कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना है और कोई चीज़ क्रिएट करनी है। अगर मेरे रिश्ते कमाल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे रिश्ते, मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी रब ने मुझे दी है, उस मेहरबानी मेरे पे इतनी की है कि मैं इसको कमाल का एक नमूना बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊँ? तो अगर आप इनसिक्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस और दुनिया के डर से वो मेरे साथ एक चीज़ रखना चाहते हैं, मुझे वो खेल नहीं खेलना, क्योंकि बहुत खेल लिया और बहुत लोगों ने खेल लिया ये खेल, ये रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा हम एक्सरसाइज कर लें, इससे अच्छा है मूवी देख लूँ मैं, उससे अच्छा है मैं लोगों से प्यार मोहब्बत की बात करके या यू नो शो कर लूँ मैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके कि जो भी वो कहते हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो कि आपके लिए इख्तियार में आपके नहीं है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं लोग, उनकी फ्री विल। आपको कंफर्टेबल होना है इसके साथ कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने किया, आई हैव टू लेट गो एंड देन डोंट। अब थोड़े से अपने आप को स्पेस दें, और क्योंकि आप अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो वो बार बार ट्रिगर करेगा आपको, तो लेट देम बी, लेट देम लर्न देयर ओन लेसन, और उसके बाद अगर आपके पास आते हैं और ठीक होने की कोशिश करते हैं तो आप वहीं से शुरू कर लें।
4: जी सर, इसी बातों से ना एक मेरे दिमाग में अभी जो चल रहा था, जो where I have problem letting it go, और उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक सिंपल चीज थी, जैसे जो मेरी इंडस्ट्री है, वी हेल्प पीपल यू नो रोड सर्विसेज, तो साल में हम एक बार ट्रक सारे ट्रक्स की चेकिंग करते हैं. सो वी नीडेड अ ड्राइवर लाइक यू नो टू गो इन देयर, देन वी पुट द ट्रक ऑन द होइस्ट सो इट गोज अप. तो एक उसने मुझसे पूछा कैन आई गो, आई सेड नाउ वी नीड यू हियर बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. इज लाइक वो बंदा थोड़ा जिस टाइप की मेंटेलिटी से मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो मुझे हिट करती है. उसका भाई आप नहीं जा सकते, आपको क्या वीजा लगता है? एंड आई डिडंट हैव एन आंसर फॉर दैट मोमेंट. और मुझे ये बात पता नहीं क्यों मेरे जहन से जा नहीं रही, लाइक दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ये सारे बंदे ऐसे करते हैं, लेकिन ये बंदे किसी चीज को समझने की बजाय लाइक दे हैव आंसर फॉर एवरीथिंग एंड दे मोस्ट पीपल इवन इंक्लूडिंग फैमिली दे से समथिंग लाइक दैट विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और मुझे इस बात से रियलाइजेशन हुई व्हेन आई एम नॉट एबल टू फिनिश व्हाट आई हैव टू से इट बॉदर्स मी फॉर डेज.
3: अच्छा हीरा सिंह मुझे एक बात बताएं, दो चीज़ें इसमें शुआ रही, ठीक है, दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे आते. पहली बात मुझे सच सच एक क्लियर बात बताएं, फर्ज कर आपके पास पेट्स हैं?
4: नहीं सर.
3: कभी पेट रखा है?
4: छोटे होते घर में था, अभी या नहीं.
3: अच्छा अभी मेरी गौर से बात सुनिएगा और उसको प्रैक्टिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही सोचें आप, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचें. फर्ज करें आपके आपने बिल्ली रखी होती, उसको आप खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके साथ आप लाड करते हैं प्यार करते हैं सब कुछ करते हैं, वो बिल्ली कोई ऐसी हरकत करती जो आपको बहुत बुरी लगती, ठीक. अब आप दूसरी तरफ इंसान के साथ आ जाएं, आप उसको ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं उसको ना, जितने तरीके से जो आप समझे उसके हिसाब से उसके साथ डील करते हैं, फिर वो इंसान आपको कुछ ऐसी बात कह देता है कि जो आपको लग जाती है, चुभ जाती है, या कोई ऐसी हरकत कर देता है जो आपको बहुत बुरी लगी है, आप क्या बिल्ली के साथ भी वही रिएक्शन देंगे जो आप किसी बंदे के साथ दे रहे हैं?
4: ऑब्वियसली नॉट सर.
3: तो इसमें आपने, मैं पहले दिन से जब से आप शो सुन रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम में से बहुत सारे इंसान क्या हैं, हैवानी हालत
4: हैवानी हालत में.
3: जब एक आदमी हैवानी हालत में होता है, बिल्ली आपको कैसे देख रही है या कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या आपको रिएक्शन देना चाहिए उसका? नहीं,
4: बिल्कुल.
3: तो ये जो इंसान भी इस तरह के होते हैं जो कि एब्रप्टली कुछ भी कह देते हैं या दे हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग और उसको गलत भी होते हैं तो नहीं मानते, आपने ये सम उनके साथ सिंपथी होती है कि ये भी हैवानी हालत में. एक बात, दूसरी बात है पठानों में और सिखों में, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि जिस तरह कल्चर होता है, जिस तरह हमें बड़ा किया जाता है और जिस तरह का रख रखाव और फैमिली और चीज़ें होती हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट का इशू होता है हमारे साथ. तो किसी इस किस्म का कोई भी जुमला कोई बोले कि भाई तुम्हें इसका वीज़ा लगता है, तो ये उसने सिर्फ अपने तरीके से एक जवाब दिया है. लोगों को बातें बड़ी करनी आती हैं तो उसको, वह एक बंदा है जो बातूनी है, उसने एक बात दी की है. लेकिन हम और आप स्पेशली ये दो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये इनकी ट्रेनिंग का, इसका खून की वजह से नहीं कह रहा मैं, ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि हमारे लिए ये बदतमीज़ी है कि नहीं?
4: बिल्कुल.
3: बदतमीज़ी जब आप जैसे ही उसको आप बदतमीज़ी के कंपार्टमेंट में डालते हैं तो सरदार जी का जो दिमाग है ना वो बदतमीज़ी का रिएक्शन देता है, क्लियर. तो उस कंपार्टमेंट में डालने के बजाय इसको जहालत के कंपार्टमेंट में डालना है, इसको जानवर वाले कंपार्टमेंट में डालना है कि ही डज नॉट, जैसे ईसा अलैहि सलाम ने कहा था फॉरगिव देम दो दे नो नॉट, इनको माफ़ करें क्योंकि ये नहीं जानते. तो वो लोग जो नहीं जानते, जो कि आपके समझाने बताने की, आई बिकम मोर नाइसर टू दीज पीपल जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ या मैं, और जो बहुत करीब है उनके लिए मैं सख्त हो जाता हूँ इन बातों पे, अगर वो ऐसी कोई बोंगियाँ मारें आगे से फजूल बात कोई करें उसमें मैं सख्ती करता हूँ क्योंकि वो बहुत करीबी लोग हैं और वो पूरा सिस्टम संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं या रिश्ते संभालते हैं, उनको आप यू कॉन्ट अफोर्ड डम पीपल अराउंड यू. लेकिन जो बाकी लोग हैं जो सेकेंड थर्ड टीयर पे होते हैं, ऐसे किसी भी बंदे की बात को सीरियस नहीं लेना बल्कि और नाइस होकर आपने सिर्फ उनको एक लुक करानी है और उनको थोड़ा सा फर्म होकर वो बात दोबारा एक्सप्लेन करनी है और उसमें कभी आप हल्का सा लाइट जेंटल तरीका भी डाल सकते हैं और कभी फर्म तरीका भी डाल सकते हैं. तो इसको इस तरीके से लेंगे तो ये जो ओवर सेंसिटिविटीज़ होती है ना, कई चीज़ें उस तरह कही नहीं जाती. जब फौज में हम होते थे कोई ऑफिसर को उल्टी सीधी बात कर देता था तो सीनियर को बहुत बुरी लग जाती थी, तो फिर जो दरमियान में सीनियर होता था ना वो जाके उस सीनियर से कहता था सर माफ़ कर दें अच्छा अफसर है, बस अंग्रेज़ी की गलती हो जाती है उस, यानी इंग्लिश में उसने जिस तरह कहा है इट जस्ट केम आउट यू नो इन अ बैड वे में निकल आई ये बात, वरना ही डिडंट मीन दैट. सो इंग्लिश की गलती, मैं मुझको कहते सर अंग्रेज़ी की गलती होगी, बेवकूफ़ को नहीं पता था, छोड़ दे माफ़ कर दे। तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी बीच में उनको थोड़ा सा लोगों को लेवरेज देना है और उस तरह उनको लीवे देंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। वरना अब आपने कहा ना कि मैं इस चीज़ से, मैं मेरा दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही है, ये ज़िंदगी की इतनी ज़बरदस्त जो ज़िंदगी मिली हुई है, जो फैमिली मिली हुई है, जो सोचें मिली हुई हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उधर जो आपके यू नो माहौल मिला हुआ है, इस जिसके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोग तरस जाते हैं, फैमिली के लिए लोग तरस जाते हैं, इज़्ज़त प्यार मोहब्बत के लिए लोग तरस जाते हैं, आपको वो सब मिला हुआ है, उसके सदके इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। और ये कोई भी चीज़ें नहीं, आपको इसको बहुत लाइट लेना होगा, वरना आपकी पार्टी जो चल रही है ज़िंदगी में और बहुत बेहतर आगे आप कर सकते हैं उसके ऊपर असर आएगा। क्लियर
4: सर? यही मेरा, मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, ये मैं कौन सी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई वाज बिफोर। और अभी अभी जैसे जैसे ये सब आपके आपके शो के थ्रू और कुछ अदर थिंग्स आई हैव कम अक्रॉस, आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन माई सेल्फ मोर दैट दीज आर द थिंग्स, दे आर जस्ट होल्डिंग मी, दे आर दिस एंकर्स, आई एम ट्राइंग टू लेट देम गो, एंड एज यू सेड बिफोर लाइक यू नो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज दिस इज व्हाट The problem I'm facing,
3: आप मुझे ये बताएं,
4: and I need it.
3: हाँ, इस सारी बात में पहले तो enlightenment में एक बात, आप enlightened हों पहले, वो enlightened ये भी जितनी आपने मुझे दो मुख्तलिफ सिचुएशन और प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें कहाँ आपने हेल्प कहाँ सीख की है मेरी? आपने मुझे एक सिचुएशन बताई है और मैंने आपको बताया ब्रेन ऐसे काम करता है, सोसाइटी ऐसे काम करती है, कंडीशनिंग ऐसे काम करती है, और उसके बाद ये चीज़ इस तरह इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बेहतर हो। इसमें हेल्प कहाँ आपने सीख की, जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है, ये भी हमारी कंडीशनिंग है, पठान होने की वजह से, सिख होने की वजह से, मर्द होने की वजह से, कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जा सकता, और मर्द बेचारा इतना ही मासूम है जितनी औरतें हैं। ब्रेन जो होता है ना उसको नहीं पता आप मर्द हैं या औरत हैं, ये लोगों ने कंडीशन हमको कर दिया है, तो इस कंडीशनिंग से हमने बाहर निकलना है। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, ना किसी को किसी की मदद की ज़रूरत है, हम लोग सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करके, ये जो भी आपने कहा ना होल्डिंग ऑन टू स्मॉल लिटल थिंग्स एंड दे कीप ऑन बॉदरिंग यू एंड यू मिस द बिगर पिक्चर, ये आपका नहीं, मेरा, हज़ारों का, हर बंदे का जो इसको सुनेगा किसी भी जगह पर, सबका ये मसला है। तो आप सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं, मैं भी अपनी चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, मुझे जो लोग मिलते हैं मैं उनकी चीज़ों को भी हाईलाइट करता हूँ, कुछ चीज़ें आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, सो वी जस्ट हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उसके इर्द गिर्द एक सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। और एक्चुअल में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा ही निकलेगा, और आखिर में अगर आप इनको कंपार्टमेंटलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता, कुल 10 से 15 सेकंड होते हैं जो रिएक्शन जिसमें हमारा निकलता है, वो 15 सेकंड मुंह बंद रखना है, वो 15 सेकंड मुंह नहीं बंद रख सकते तो वहाँ से निकल जाना है, वो कुछ और करने की कोशिश करनी है, जस्ट ये इंस्टिंक्टिव जो एकदम रिएक्शन हम देने की कोशिश करते हैं, इससे बचना है आपको। मैं खुद बचने की कोशिश करता हूँ, लोगों से अवॉइड करता हूँ, फोन कॉल से अवॉइड करता हूँ, वो ब्लड रिलेशन से अवॉइड करता हूँ, जब तक मैं उस मूड में और सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं इस किस्म की स्टुपिडिटी ले सकूँ और लाइट रख सकूँ चीज़ों को। तो मेरा भी यही स्ट्रगल है जो आपकी स्ट्रगल है, तो कोई ना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई ऐसा कोई एहसान कर रहा हूँ, तो आप इन बातों से बाहर निकलेंगे, आप आते जाते रहेंगे इस तरह और गप लगाते रहेंगे, तो मैं यकीन से जो आपका काम सालों में होना है ना, वो मंथ्स में निकल आएगा, और आप उस आराम से फिर आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देंगे।
4: तो देखिए, अभी आपने ये बात मुझे 15 मिनट पहले भी बोली थी, लेकिन अगेन वही मेंटल कंडीशनिंग की बात आ गई। आई विल डेफिनेटली कीपिंग ट्राई टू keep tweaking my mind that I'm not seeking help, we are just discussing. तो ये बात मुझे अपनी बार बार करनी, बस अभी मुझे ये समझ में आ गया, ये बदर
3: करेगी ना, मुझे जो चीज़ बदर करती है मैं उसको लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्टेंट है सीधा सीधा। आप जब कोई चीज़ बॉदर करती है तो आपको लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, अब इसका मुझे मसला हल चाहिए, अब मैं उसके साथ फलां करूँगा, ये इससे बाहर निकल कर बिल्कुल लाइट रखें खुद को। मुझे जब कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है जब मुझे बॉदर करती है, मैं लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कमाल कौन, इसके बारे में बात करेंगे, इर्द गिर्द से लोग कहते हैं अच्छा इसका ये मतलब होता है, उनको भी ऐसा ही होता है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं भी सारी अपनी ही चीज़ों के बारे में, और जो चीज़ मुझे लोग मिलते हैं उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो पॉइंट्स बनते हैं, और उसी से ही शो बनता है, और उसी से ये नॉन स्टॉप हज़ारों घंटे बने। तो आपने इसको इस तरह से लेने की कोशिश करनी है, और आपको एक दिन पता ही नहीं चलेगा, आप लाइटर एज फेदर हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद, जिस तरह मैं चीज़ें करता हूँ ना, मैं जैसे गाड़ी भी ऐसे चलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ब्रेकें ना लगानी पड़े, स्पीड इतनी होनी चाहिए, राइट लेफ्ट बिल्कुल सीमलेस तरीके से ज़िंदगी जीना, सीमलेस तरीके से रिश्ते बनाना, और सीमलेस तरीके से हीलिंग करना, उसको बिग डील बना के अफरा तफरी मचाना, और अगर गलती हो गई है या वही रिएक्शन दोबारा दे दिया तो अपने आप को मारना पीटना नहीं है, जहनी तौर पर या फिज़िकली या कोई चीज़ उठा कर नहीं फेंकनी है, ओहो फिर वही स्टूपिडिटी होगी, फिर वही रिएक्शन होगी। अवॉइड करना है मुझे, इस बंदे से अवॉइड करना है, सिचुएशन से अवॉइड करना है, उसको लाइट लेना शुरू करें।
4: जी सर, मैंने भी कुछ चीजें अभी जब लिखने की बात आई तो मैं जब लिखता हूँ कभी कभी मैं खुद डर जाता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज सो पावरफुल। और जो मैंने चीजें कुछ ऑब्जर्व करी हैं, जैसे हम मर्द और औरत की बात कर रहे थे, मैं खुद की एग्जांपल ही दे सकता हूँ। देन अगेन, कुछ दिन पहले हमारा बच्चा ही वाज आउटसाइड इन द वॉकर, वो भाग रहा था, तो मैंने एक बार दिमाग में बात भी आई, लाइक आई शुड पुट सैंडल्स ऑन हिम, बट फिर मैं भूल गया। तो वो भागते भागते उसके नाखून से खून बहने लगा, और फिर जो मैंने अपने आप को पीटा है अंदर से,
3: यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों पीटा, देखो यही तो मैं, आप ये टू हार्ड, मैं कब से आपको, कितने सालों से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, एंड यू नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, थिंग्स हैपन, नेक्स्ट टाइम आपको ये सोचना है उसके बजाय, ओहो यार मुझे उस वक्त कर देना चाहिए था, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना, और अगली दफा जब ये करेगा और तो उसको आपने जो भी सैंडल्स जो भी आप कह रहे हो पहना देने, खत्म, इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने। और ये अपने आप को बीट अप करना, आप उस बंदे को मार रहे हो जिसने जिंदगी में कोई काम करना है, उस जहन को मार रहे हो जिसने आगे कोई कुछ सोचने आया, कोई फिगर आउट करना है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो परेशानियों से निकलना चाहता है, जो मोर रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो बाकी लोगों को भी सीधे रास्ते पर लेके जाना चाहता है, वो अगर अपने आप को ही मारता पीटता रहेगा तो उसने आगे काम खोते तो सिर करना है।
4: वही बात, जब मैं अपने आप को मार पीट रहा था तभी मैं अपनी वाइफ को भी ऑब्जर्व कर रहा था, और मैंने उसको देखा, शी सिटिंग देयर काम एंड कलेक्टिवली, वो उसको भी देख रही है, और मुझे हीरा इट्स ओके, और मुझे बोल हीरा इट्स ओके, रिलैक्स,
3: ये कई मेरे दोस्त भी है ना, कई दोस्त है, मेरा एक दोस्त है उसके साथ में कि वॉक कभी हम कर रहे होते हैं तो कुत्ता कहीं से आता है वो छलांग मार देता है उसको, मैं कहता हूं भाई, और वो कहता है नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, कंफर्टेबल कहां हूं, छलांग मार के पैर मेरा कुचल रहे तुम तो वो, और ये कहते मानते भी नहीं होते ऐसे लोग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू काम योर नर्व्स डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील, अनलेस कोई इतना बड़ा कोई काम हो जाए जो रिवर्सिबल नहीं है, और वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हर वक्त हाई अलर्ट पे रहते हो, हर छोटी चीज़ बिग डील होती है, तो आपके जो पार्टनर्स होते हैं ना, फैमिली के भी लोग पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस में भी पार्टनर्स होते हैं, जिंदगी में होते हैं, वो उनको ना, वो भी बेचारे हाई अलर्ट पे रहते हैं, और वो हर वक्त आपकी परेशानी लेके बैठे रहते हैं, हालांकि आप वो बनना चाहते हो कि जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
4: Exactly.
3: तो ये तो उल्टा चल रहा है ना,
4: बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और इस बात का दुख बार बार अंदर अंदर खाया जाता है,
3: और दुख नहीं, यही तो मैं आपसे कहता हूं कि दुख नहीं करना है, उसको फिगर आउट करना है, उसको दुख नहीं लगाना, दुख ये लगाना, ओहो फिर वही स्टुपिडिटी, फिर वही बेवकूफी, चलो दोबारा से करते हैं।
4: हाँ जी, अभी मैंने दोबारा फिर करना ये शुरू किया है, लाइक अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट आई वेंट थ्रू, और जो स्पेशली व्हाट आई फील इन द मोमेंट, क्योंकि अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम आई सेड व्हेन यू सिटिंग कॉमली कलेक्टिवली यू नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग व्हाट आई शुड डू, हाउ आई एम सपोज्ड टू डू।
3: आपने एक बात याद रखनी है, मैं अभी काम की बात मुझे ज़हन में आ गई है, आप जिंदगी में कभी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना सकोगे, ना किसी मर्द से, ना औरत से, ना बच्चे से, अगर आपका बिहेवियर बाइपोलर टाइप है, एक आप बहुत अच्छे आदमी है, मज़े के आदमी है, कंफर्टेबल, और एकदम आप अप हो जाते हैं, एकदम अप और एकदम डाउन होना जो है ना, ये हमेशा ज़िंदगी में लोगों को आपसे रिश्ते बनाने से दूर रखेगा, आपके ट्रस्ट के ऊपर शक रहेगा, और आप बाकी चीज़ों पर रहेगा कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़ के बारे में 10 दफ़ा 20 दफ़ा बताते हैं, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं या कुछ एक्टिव, यू नो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, तो वो और बात होती है, लेकिन अगर आप फौरन बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के, एकदम बहुत बड़ा इशू बना दोगे और एकदम उसको नीचे लेके जाओगे, तो लोग आपके इर्द गिर्द अनकंफर्टेबल और घबराए हुए रहेंगे, और इस तरह वो कभी आपको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने एक्शंस को बिल्कुल ऐसे रफ अराउंड द एजेस हो रहा है काम, इसको स्मूद करना है, ताकि आप लोगों से टकराएं तो उनको कॉर्नर आपके कोने ना लगें, आपको रफ अराउंड दिया जाए बिल्कुल आपको, और मीनिंगफुल, इतनी आप मेहनत करते हैं, इतने जज्बों से, प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती
4: हैं। है सर, रिएक्शन के टाइम पे वो सारी चीजें ऐसे उड़ जाती हैं जैसे वो स्टीम की तरह, भी कभी थी ही नहीं वहां पे।
3: बिल्कुल, तो इसका, इसमें दुख नहीं लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें आप एक चीज में फेल हुए हो, बस उस पे जोर लगाना है कि यार ये क्यों मैं कर जाता हूँ, इतना काम मैंने किया था। अब देखो, मैंने ना वादा किया था, मेरा ना कल तबीयत बहुत खराब थी, रात को मैं सोया भी नहीं, नाक बंद, सांस बंद, सब बुरे हालात थे, और अपनी मेडिसिन वगैरह भी लिया, मेरा दिमाग बिल्कुल सुबह काम नहीं कर रहा था, मैंने धूप भी लगाई, मैंने सारे काम कर लिए, चाय चाय भी पी ली, मैंने कहा किसी तरह मैं शो के काबिल हो जाऊँ। अगर मैंने मी टाइम में पिछले महीने में वादा ना किया होता मंडे के शो का, तो मैं आज स्किप कर जाता, लेकिन क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मंडे और वेंसडे कन्फर्म है, फ्राइडे अगर मुझे कभी भी चाहिए होगा अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए, यू नो, लिखाई पढ़ाई के लिए, तो मैं वो ले लिया करूँगा, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं जब आया हूँ, नहाया धोया हूँ, फ्रेशन अप होकर मैंने सारे काम कर लिया, मैं आया हूँ और आगे काम एक हो रहा है। तो आपने जैसे ही मार खाएंगे, कुछ भी हटेंगे, आपने दोबारा वापस जाना है, समझ रहे हो? कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंसी का, मैं एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी करने की कोशिश करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला हूँ और परमानेंट करता ही रहूँगा, मुझसे वो नहीं होता, लेकिन आई एम कंसिस्टेंट इन कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। कोई बात नहीं, लेट हो गए, चार पाँच दिन नहीं हो सकी, गड़बड़ हो गई, सेहत ख़राब होगी, कुछ भी, बट कम बैक टू इट। तो दो तीन हफ्ते लग गए, बट जस्ट कम बैक टू इट, कमिंग कंसिस्टेंटली, कमिंग बैक टू वट योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ वॉज इज द थिंग विच विल गेट यू वेयर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

दो से लेकर चार बजे तक यहाँ लिंक एफ 96.7 एफएम से बराह रास्त आप खिदमत पेश की जाता है। आप तमाम बहन भाइयों का बड़ा शुक्रिया और आपकी ज़रा नवाजी कि आप ये रेडियो नशरियात जो हैं ये सारी सुनते हैं, और बिलखसूस और बिलअमूम ये मेरा प्रोग्राम भी आप सुनते देखते हैं और उस पर अपना नुक्ता नज़र अपनी राय का इज़हार फरमाते हैं। यकीन कीजिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं जो है वो आपकी कोई तारीफ़ कर सकूं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है। मैंने कई बार बताया कि राय का जो इज़हार करना है वो उसी सूरत में होता है कि जब कोई चीज़ आप सुने। इसका मतलब ये है कि जब हम ये प्रोग्राम यहाँ लेकर आते हैं और आप लोग हमारे साथ एक अंगेज हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, तो हमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो है वो बायसे मसर्रत है। जितना तो इंसान हम यहाँ पर आते हैं, बात तो वही हम आप खिदमत पेश कर सकते हैं जो हम जानते हैं। तो मैं तो कई बार आपकी खिदमत में गुज़ार कर चुका हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वही मियाँ साहब का एक शेर को हमेशा वाला दिया जाता है कि मेरे नालू हर कोई बेहतर, मैं और नीच अजाणा, थोड़ा बहुता शेर सुखन दा काटा वादा जाना। यानी इसका मफहूम शेर का भी यही है कि ये जो है वो मैं कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो मेरी समझ के अंदर है वो मैं आप खिदमत में पेश कर देता हूँ। और आपका शुक्रिया इसलिए कि आप उस जो बात आप तक पहुँचती है उसको आप पसंद फरमाते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की या जितने भी मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं उन सब की खैरियत फरमाए। जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं इन दिनों में, आज इससे पहले जितने भी हमारे मरहूमीन हैं, वालदैन बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, अल्लाह पाक उन सब की जो है मगफ़रत फरमाए, उनको जन्नत और फिरदौस में आला व अफ़ज़ल मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील जो है अता फरमाए। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनको सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के जितने मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, इसी तरीके से साउथ एशिया के अंदर जितने भी मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क में वो परेशानी का शिकार हैं, ज़ुल्म व जबर का जो है वो शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको ज़ालम के ज़ुल्म से जो है वो निजात अता फरमा। अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं उनको सेहतियाबी अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिन लोगों की औलादें हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साले बना, वालदेन की आंखों की ठंडक बना। और मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने में बस रहे हैं उनको वो इज़्ज़त और शान अता फरमा, जिसका जो है वो कुरान पाक ने हमें हुक्म दिया है इबादुर रहमान जो है वो का हमें दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें उनमें शामिल फरमा। और अल्लाह पाक हमें अमली मुसलमान बनने और उसका सबूत जो है वो देने की जो है वो तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पाक जो है वो सब लोग खैरियत फरमाए और हमें इत्तफाक और इत्तेहाद, यकजहती, मोहब्बत, अख़ुव्वत, रवादारी से एक दूसरे के साथ चलने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और हमारे अंदर से ये गैज़ो गज़ब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं, इन सार तमाम को अल्लाह पाक जो हमें इनमें से हमें जो है दिल से निकाल दी और हमें तौफीक दे आपस में मोहब्बत और प्यार जो है वो आपस में रखें। और हमारी अल्लाह पाक हमारी जो है आखिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम के चार हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम किसी नुक्ते पर बात करते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर बात होती है, नज़म तुलू इस्लाम आज इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो है वो तीसरे हिस्से में
عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سیف الملوک جو کتاب ہے سفر العشق، وہ ہم باقاعدگی سے وہ واقعہ جو ہے اس پر جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، اور آخر میں آخری سے میں اپنے استاد محترم پیر و مرشد جناب محمد حنیف حنفی صاحب جو ہیں ان کے چند شعر جو ہے پیش کرتا ہوں، اور ان پر جو ہے کچھ بات یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے یا کوئی بھی علم ہے وہ انسان کی، بندہ یہ بات سوچے کہ وہ سارے کا سارا میرے ذہن میں آ گیا اور میں اس کی ساری تشریح تفصیل جانتا ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ علم اصل میں یہ بہت بڑا سمندر ہے، علم انسان آہستہ آہستہ سیکھتا رہتا ہے۔ اب پچھلے ہفتے بھی ہم نے علم پر ہی بات کر رہے تھے، تو آج بھی جو ہے وہ ہمارا جو پہلا حصہ ہوگا اس میں علم پر ہی بات ہوگی۔ اصل میں علم کا مطلب یہ ہے جاننا، کچھ سیکھنا، کچھ حاصل کرنا، اور جاننے سیکھنے کے بعد اپنی منزل کا تعین کرنا کہ ہم نے کس طرف جاننا ہے کس طرف نہیں جاننا۔ یہ علم کی ہی بدولت جو ہے یہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یہ بڑی احسن جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اپنی شکل پر اس کو پیدا فرمایا۔

0: Radio for the community, by the community.
1: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: अल्लाह by Tasneem Motala. Some say he is the moon. Some say he is the sun. But we as Muslims believe he is one. He teaches us to love and not to hate. He is Allah, the Most High, the Most Great.

उन सब की भी क्या करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मेंटेनेंस क्या है कि खाना बेहतर खाओ, यू नो, अपनी नींद का सही तरह से अहतमाम करो, गेट इनफ स्लीप, राइट, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, ये मेंटेन फिजिकल मेंटेनेंस है हमारी। लेकिन अल्लाह ताला जब कईम है ना, वो इस तरह कईम है कि मेरे दिन की एक धड़कन से अगली धड़कन तक उसको इजाज़त देनी पड़ती है, मैं चलूँ और फिर चलूँ और फिर मैं चलूँ, और जो खून मेरी रगों में चल रहा है उसको इजाज़त देनी, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, एक एक लम्हा, एक एक सेल, वो अल्लाह ताला है कईम। वो अगर एक दफ़ा भी ध्यान देना छोड़ दे तो मेरा वजूद ही ना रहे। देखें, एक फ़लसफ़ा है, खुदा के बारे में कई फ़लसफ़े हैं, उसमें से एक फ़लसफ़ा ये है कि इस खुदा ने कायनात बनाई और उसको छोड़ दिया, अब वो ऑटो पायलट पे चल रही है, खुद ही से चल रही है। लेकिन हमारा फ़लसफ़ा है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारा रब है, और रब से मुराद ये है कि कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, कुछ भी खुद से नहीं चल, हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है, उसको कायम रखा जा रहा है हर लम्हे। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, एक पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता, हवा का हल्का सा झोंका नहीं लगता, एक एक सेल मेरे जिस्म का, वो तमाम मेंटेन किए हुए हैं। यह है अलकय्यम। ये सिर्फ लफ्ज था क्या, रब। अब इससे मेरा और अल्लाह का क्या ताल्लुक बना, आप इसको समझ लें। अब आपका रिव्यू होगा, पहली चीज़ क्या थी, ओके, हम भी कुछ चीज़ों के मालिक होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ के मालिक हो तो क्या ये लाजमी है कि आपकी पूरी अथॉरिटी है उसके ऊपर, आप उसके सरदार भी हो? जैसे फ़र्ज़ करें आप गाड़ी के मालिक हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जैसे चाहें गाड़ी चलाएं? ऐसा तो नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि आप गाड़ी के साथ जो चाहे करें, कोई भी आपस में कोई आगे से इंटरवीन नहीं करेगा ना? आप में से कुछ होम ओनर है, आपने घर लिया हुआ है, क्या यह मुमकिन है कि आप घर में जो तब्दीली लाना चाहें लाएं, या हुकूमत पीछे से आ जाती है या सोसाइटी आ जाती है, कहती है ये नहीं आप कर सकते, ये कलर आप नहीं यूज़ कर सकते, ये आप बाहर ऐसे नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं? आप ओन करते भी हो लेकिन फिर भी आपके को रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं तो आप मालिक तो हो, सैयद नहीं हो, होता है कि नहीं? और कभी कोई सैयद होता है लेकिन मालिक नहीं होता, वो तो वाजे है। तीसरा नाम क्या था मालिक और सैयद के अलावा? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप किसी चीज़ को ओन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका ख्याल नहीं करते? कभी होता है? किसी का बाग है उसने छोड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी है उसका ख्याल नहीं कर रहा, किसी की साइकिल है बाहर बारिश में जंग लग रहा है उसे, होता है कि नहीं? यानी आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसको कायम नहीं रख रहे, या आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसने आपने उसकी तरबियत का कोई अहतमाम नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, उसको डिवेलप नहीं किया, होता है कि नहीं? अल्लाह ताला सिर्फ ऐसा रब नहीं है जो ओन करता है, यानी उसकी मिल्कियत तो है लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। मालिक होने के बाद मुरब्बी, सैयद, मुनाइम, कय्यम, और ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या लफ्ज़ बना? रब। भारी लफ्ज़ है, भारी लफ्ज़ है। लेकिन इसकी बुनियाद इस तरह समझ लें कि एक अरबी में जब किसी लफ्ज़ के कई मायने होते हैं ना, तो एक होता है बुनियादी मायना और फिर बाकी उसके दूसरे दर्जे में मायने होते हैं। तो बुनियादी मायना फिर भी मालिक का है, और उसके साथ ये जो बाकी चार है ना, उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन इससे बुनियादी मायने में फ़र्क नहीं आता। बुनियादी मायना फिर भी क्या है? मालिक का। ये आखिरी बात होगी इस सेशन के लिए, इसको भी समझ लें अच्छी तरह कि इसकी क्या अहमियत है। असल में इसकी जो इजाफत है ना, एक्चुअली ये बात मैं मालिक यौमद्दीन में फिर सही से समझाऊँगा, अभी अलआलमीन समझ लें, क्योंकि ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अस्समावाति वल अर्द। और जगह देखा है अस्समावात वल अर्द, कभी सुना है? क्या है अस्समावात वल अर्द? आसमान जमीन का रब, कितनी दफा सुनते आए हम, लेकिन फातिहा में नहीं है, फातिहा में है रब्बिल आलमीन। और अल आलमीन का तर्जुमा आमतौर पर क्या किया जाता है? तमाम जहानों का रब, सुना होगा आपने, है ना, तमाम जहानों का मालिक। एक तो

0: मालिक से हमें हटना पड़ेगा क्योंकि मालिक बाद में आ रहा है, तो रब पे रखते हैं बात और रब के ये पांच मायने अपने जहन में रखते हैं। लेकिन आलमीन को समझ लें, अगर लफ्ज इस्तेमाल होता अलआवालिम, अलआवालिम अरबी में जो वाहिद लफ्ज है वो है आलम, आलम उर्दू में भी हम आलम कहते हैं, उसकी जमा है अवालिम। अगर अवालिम का लफ्ज इस्तेमाल होता तो हम कहते तमाम जहानों का रब, कोई मसला नहीं। अवालिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अवालिम, नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम अरबी में, उसकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ लें, बात यह है कि यहां कहा जा रहा है कि एक तो है जब आप जहानों के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि कितने सितारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कायनात कितनी बड़ी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। जब उसके बारे में बात होती है कुरान में तो कहा जाता है अस्समावाती वल अर्द, ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है दुनिया, लोगों के जहानों की बात हो रही है, लोगों की दुनिया है। जैसे पाकिस्तान आया हूँ, अपने पेरेंट्स को कॉल की पहली दफ़ा जब मैं आया था कुछ महीने पहले 29 साल बाद, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहा ये तो और ही दुनिया है, ये कोई और ही आलम है। तुम में से कोई ऑस्ट्रेलिया जाए, कोई और ही क्या है, आलम है। मैं न्यूयॉर्क में कॉलेज गया था, पहली दफ़ा कैलिफोर्निया गया, वो कोई और ही आलम था न्यूयॉर्क से हटके। हर सोसाइटी एक अलग किस्म का क्या होता है, आलम होता है। आपके दादा की जनरेशन, आपके परदादा की जनरेशन, आप उनसे पूछें उस वक्त कैसा था पाकिस्तान, उस वक्त कैसा था, लोग उस वक्त कैसे थे, वो कहेंगे वो कोई और ही आलम था। ये तो ये दुनिया बदल गई है। मुझे एक साहब मिले, पाकिस्तानी साहब थे, मैं ओक्लाहोमा सिटी गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। एक मैंने कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा तो वो ग्रोसरी रेस्टोरेंट नहीं मिला, एक ग्रोसरी स्टोर मिला हलाल। मैंने कहा चलो वहाँ से कुछ देखते हैं। मैं मिला एक पाकिस्तानी साहब थे, वहाँ 55 साल से रह रहे हैं, 55 साल से। तो मैंने कहा जब आप आए थे तो ये कैसा था, कहते हैं एक और ही दुनिया थी ये। राइट तो आलमीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई, मुख्तलिफ सोसाइटीज, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ जनरेशंस, मुख्तलिफ पुश्तें। 1000 साल पहले दुनिया कोई और चीज़ थी, 3000 साल पहले कोई और आलम था, 20,000 साल पहले कोई और आलम था, आज से 100 साल बाद कोई और आलम होगा। और उन तमाम आलमों का रब कौन है, अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है ये। वो क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अरबों का रब नहीं है, पाकिस्तानियों का रब नहीं है, वो हिंदुओं का भी रब है, वो एथीस्ट का भी रब है, वो अमेरिकन्स का भी रब है, वो ऑस्ट्रेलियंस का भी रब है। और उन सब के साथ उसका रिश्ता क्या है, पांच चीज़ें। उनका मालिक भी है, उनको तोहफे भी देता है, उनका इक्तदार भी उस पर उन सब पर इक्तदार भी रखता है, उन सबको कायम भी किए हुए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी ना, अब आपका नज़रिया बदल जाता है सारी सोसाइटीज़ के बारे में दुनिया की। आप ये नहीं देखते ये वाली सोसाइटी इस पर लानत है, ये वाली सोसाइटी जहन्नमी है, ये वाली सोसाइटी ना ना ना, रब्बिल आलमीन। और अगर मुझे अपने रब की निशानियां देखनी है, अपने रब की अजमत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो, अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज को देखो, मुख्तलिफ सोसाइटीज को देखो, तारीख को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज़ में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का ज़िम्मा किसने लिए हुए था, अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। और इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने, पूरी दुनिया। और उसकी रहमत का दायरा इतना बड़ा हो गया कि वो तो तमाम का ख्याल रखे हुए हैं, तमाम को देखे हुए अपने सामने।
1: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।